वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

0: भक्तिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केली वेणुधुनी 90.4 FM वरती तुम्ही ट्युनिंग आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: धैर्यता का महत्व. आजकल मनुष्य की जिंदगी बड़ी भागदौड़ भरी हो चुकी है. मानो हर एक के पैरों में जैसे पहिए लगे हो. इसका कारण है हर व्यक्ति अपना काम जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहता है. घंटों का काम मिनटों में निपटाना चाहता है. हर काम झटपट हो जाए, मनचाही चीज फटाफट मिल जाए, मन की मुराद पल भर में पूरी हो जाए, यही हर किसी की चाहत होती है. लेकिन काम नहीं बना तो हुए निराश, चीज नहीं मिली तो बने उदास. मानो यूं बीज बोया और यूं फल पाया, लेकिन क्या यह संभव है? नहीं नहीं, कदापि नहीं. थोड़ा सा सब्र तो करना ही पड़ेगा ना. बिना धैर्यता के मन की इच्छा कैसे पूरी होगी? इसलिए कहा भी जाता है धीरज का फल मीठा होता है. लेकिन जल्दीबाजी से तो कई बार बना हुआ काम बिगड़ जाता है. अतः किसी भी कार्य की सफलता चाहते हैं तो धीरज धरने में ही भलाई है भलाई. उतावलापन तो सफलता पाने में सबसे बड़ी बाधा और रुकावट है. कार्य को पूरे होने तक सब्र करें. कोई भी कार्य असफल होने के बाद निराश होकर हार न मान ले. साहस का साथ ले, हिम्मत से काम ले. याद रखे हिम्मते मर्दा तो मदद दे खुदा. लक्ष्य पूरा होने तक बिना थके काम करते रहे. सफलता मिलने तक उमंग उत्साह से भरपूर रहे. निराशा और संशय को त्याग दे तो समझो सफलता हुई पड़ी है. वास्तव में यही धैर्यता है. किसी स्पर्धक व सफलता के अभिलाषी के लिए धैर्यता एक शक्तिशाली कवच और शस्त्र से कम नहीं. एक विशाल बांध जल के प्रचंड प्रवाह को भी अपनी मजबूत दीवार रूपी शक्तिशाली भुजाओं से बांध लेता है. ऐसे ही धैर्यता भी शक्तियों को संचार कराने वाली गुप्त और विशालकाय दीवार होती है. अनेक सफलताओं का सामना करने के लिए निरंतर आंतरिक शक्तियों की जरूरत होती है और जरूरी होता है मनोबल और आत्मविश्वास, जो केवल धैर्यता के बदौलत ही पाया जा सकता है. अतः धैर्यता को अपनाइए और यश के मधुर फल चखिए. ऐसी हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं.
0: जीवनात प्रत्येक गोष्ट आपल्या इच्छेप्रमाणे घडेलच असं नाही. काही गोष्टी स्वीकाराव्या लागतात, काहींसाठी प्रयत्न करावे लागतात आणि काही गोष्टी ईश्वरावर सोपवाव्या लागतात. श्रद्धा ठेवा, प्रयत्न करत राहा आणि योग्य वेळेची प्रतीक्षा करा. ईश्वराच्या नियोजनावर विश्वास ठेवा. मनात राग असेल तर क्षमा करा, मनात चिंता असेल तर प्रार्थना करा आणि मनात आनंद असेल तर तो इतरांसोबत वाटा. आजचा दिवस एखाद्या चांगल्या विचाराने आणि एका चांगल्या कृतीने सुरू करूया. हे होते आजचे आध्यात्मिक विचार आणि आता वेळ झालेली आहे छानसं भक्तिगीत ऐकण्याची. तुम्ही ऐकत राहा वेणुधुनी 90.4 FM KLE कणसू, भक्तिमय सकाळ.
2: या बया दिवा लागला की

0: वेणु धोनी 90.4 FM KLE गणसु पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: वाली चार मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
2: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले चार प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और पांचवा प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले चार प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये फोर लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को चार लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना बिहार के बढ़ते राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने के कारण रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
2: ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा फोर लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से दो वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी दो दिन की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान उन्होंने आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री करेन ब्रुटियान और जनरल स्टाफ प्रमुख एडवर्ड अस्रियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीक सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। एक रिपोर्ट।
3: सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास तथा स्थिरता पर हुई चर्चाओं से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार हुई। इसे पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान लागू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच जारी पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने कहा है कि परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिषद में कार्यप्रणाली पर चर्चा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता में विस्तार और विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की

0: भारत की मांग दोहराई।
1: सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत का रुख स्पष्ट रूप से ज्ञात है। हम ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहते हैं। इसे केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित बिंदुओं और वार्ताओं के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है।
0: उन्होंने कहा कि वर्ष 1945 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। चार दिवसीय इस फेस्टिवल में भारतीय और रूसी समुदायों को संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी संबंधों का जश्न देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट।
2: यह फेस्टिवल मॉस्को के गोस्टिनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती थीम पर आयोजित इस फेस्टिवल में कई जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। यहाँ बने लगभग 20 खास जोन में आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे योग, शतरंज, भारतीय शादियाँ, नृत्य, भारतीय व्यंजन और आयुर्वेद को जानने समझने का मौका मिलेगा। इस फेस्टिवल में पूरे रूस से लगभग 75 योग स्कूल और दूसरे देशों के इंस्ट्रक्टर भी शामिल होंगे। भारतीय नृत्य की विविधता और कलात्मक परंपराओं को दिखाने वाले कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा भारतीय और रूसी डांसर भी हिस्सा लेंगे। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल उली अहमद के बीच होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए लेकिन वो विफल रहा। एक रिपोर्ट।
3: ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले किसी भी देश को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी देश जो अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को समर्थन देने की अनुमति देता है उसे भी भारी आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अपनी चेतावनी को दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत भविष्य में फिर से शुरू हो सकती है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान को पहले समझौता करने के लिए तैयार होना होगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गालिबफ ने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार बल।
4: जी विशाल, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं हॉकी से। FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने 2-2 गोल किए जबकि अभिषेक ने 1 गोल दागा। और विशाल, अगर बात करें बैडमिंटन की तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। अगर बात की जाए मिक्स्ड डबल्स में तो ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। और ले चलते हैं अपने श्रोताओं को क्रिकेट के मैदान की तरफ। तो श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो विशाल, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
5: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी गंभीर समस्या बना हुआ है। पानी का स्तर अभी भी ऊंचा है और धीरे धीरे कम हो रहा है जिससे कई लोग फंसे हुए हैं। बालेश्वर जिले में बालियापाल सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है जहां खबर है कि 45,000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। भद्रक जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है।

0: है। राजघाट पर आज सुबह 6 बजे नदी 11.80 मीटर के स्तर पर बह रही थी, जबकि खतरे का निशान 10.36 मीटर है। सुवर्ण रेखा की बाढ़ से लगभग 2,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। IMD ने इस शनिवार से फिर बारिश का अनुमान जताया है और मयूरभंज, केंदुझर और सुंदरगढ़ जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है, जिससे और ज्यादा बाढ़ आने की चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश से गर्मी से राहत मिली है, मौसम सुहावना हो गया है, कई इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
2: धन्यवाद विशाल। जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग, भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो कोर का ये बयान आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण के अनुसार जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे में सर्जियो गोर ने कश्मीर को लेकर अमेरिकी रुख में बड़े बदलाव का दिया संकेत। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा परामर्श की करेंगे समीक्षा। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र आंदोलन के बीच झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई, दैनिक भास्कर में है। 22 भर्ती परीक्षा रद्द, CID को सौंपी गई जांच। UPSC जैसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA से सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल नवभारत टाइम्स में है। जेंजी को साधने की मोर्चाबंदी तेज, अमर उजाला लिखता है, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वविद्यालयों में युवाओं से संवाद का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा। नए सिम कार्ड के लिए नए नियम सख्त, हिंदुस्तान लिखता है, साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट रोकने के लिए सरकार ने नए CM जारी करने की प्रक्रिया और कठोर की। और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए तय समय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की जाएगी पहचान।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्स्टर्डम में इंग्लैंड से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप ट्यून है और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणु धोनी 90.4 FM के LE कनसुप। पहिल्यांदाच हुबळीमध्ये नवीन व युवा उद्योजक, स्टार्टअप व्यावसायिक तसेच स्वयंरोजगार सुरू करू इच्छिणाऱ्यांसाठी ही एक सुवर्ण संधी। तुमच्या कल्पनांचे उत्पन्नामध्ये रूपांतर करा। तुमच्या स्वप्नातील व्यवसायाचा भक्कम पाया घालण्यासाठी आणि उद्योजकीय कौशल्य विकसित करण्यासाठी विशेष एक दिवसीय स्किल डेव्हलपमेंट कार्यशाळा Empower 365, कल्पनेपासून कंपनीपर्यंत। रविवार दिनांक 18 ऑक्टोबर 2026 रोजी हुबळी येथे। यशस्वी आणि फायदेशीर उद्योजक होण्यासाठी आवश्यक कौशल्य विकसित करण्याची संधी गमवू नका। आजच आपले नाव नोंदवा। नोंदणीसाठी संपर्क 9513519666। गिकोना सक्सेस स्ट्रॅटेजी।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सुन रहे हैं KLE वेणुध्वनि 90.4 FM। बी रिलैक्स लेकर आई हूं मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आर्जेस्वरा। समर्स आर अप्रोचिंग एंड वी हैव टू गेट रेडी फॉर समर्स। गर्मियों में हम अपने आप का ख्याल कैसे रखें, इसके बारे में बात करेंगे। एक शो मैंने ऑलरेडी कर दिया है इसके ऊपर, बेसिक केयर कैसे लेनी है ये तो मैंने आपको बताया। पर गर्मियों में ना हमें हमेशा कुछ ना कुछ ठंडा खाने का या पीने का मन करता है, और हम बहुत सारे स्वीट शुगरी जो शरबत होते हैं उनको कंज्यूम करते हैं, बहुत सारा आइसक्रीम कंज्यूम करते हैं, बर्फ का गोला जो मार्केट में मिलता है फ्लेवर्स वाला वो खाने की कोशिश करते हैं। और अल्टीमेटली हमें कुछ पल की खुशी तो मिलती ही है इन सब ठंडी चीजों को खाकर, पर हमारी तबीयत भी बिगड़ती है क्योंकि ये सारी चीजें हमारे लिए हेल्दी नहीं है। तो आज मैं कुछ ऐसे आइडियाज लेकर आई हूँ जो आपके समर को हेल्दी बना सकते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो हेल्दी समर बनाने में तो बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM। बी रिलैक्स विद आरजे स्वरा। शुरुआत के कुछ गाने सुनाती हूँ और फिर हमारे टॉपिक की शुरुआत होगी। सुनते रहिए और एंजॉय करते रहिए।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं KLE वेणुध्वनि 90.4 FM। बी रिलैक्स विद आरजे स्वरा। और जो भी आपका फेवरेट आइसक्रीम ब्रांड हो ना, जहाँ से आप हमेशा आइसक्रीम खाते हो, कभी भी उनके पैक के पीछे जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं उनको ध्यान से पढ़े, क्योंकि जो सारे आइसक्रीम्स हम खाते हैं उनमें एक्चुअल रियल मिल्क फैट से बने हुए आइसक्रीम बहुत कम होते हैं, और बाकी जो मैक्सिमम आइसक्रीम्स हैं वो रियल मिल्क से नहीं, आर्टिफिशियल क्रीम से बने हुए होते हैं, और ये आर्टिफिशियल क्रीम वेजिटेबल ऑयल से बनता है। तो ये क्रीम हमारे गले के लिए तो खराब है ही, पर हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत खराब है। अगर नेचुरल आइसक्रीम आपको खाना है, हमारी इंडियन कुल्फी जो है, देसी कुल्फी जिसे हम कहते हैं, ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, आइसक्रीम का बहुत बढ़िया सब्स्टिट्यूट है। पर उससे पहले भी, जब भी हम आइसक्रीम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं या ठंडी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठंडा शरबत, गोला, आइसक्रीम, कुल्फी, तो ये सारी चीज़ें एक लिमिट में ही अच्छी होती है, क्योंकि उसके बाद में ये आपका गला खराब करती है। एक बार आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो गया तो दैट फॉलोज सर्दी, खांसी, फीवर, ये सारी चीज़ें आपको हो सकती है। तो अभी भी जो हेल्दी ऑप्शंस मैं बताने वाली हूँ उनको भी आप लिमिट में खाएं। हेल्दी ऑप्शंस इसलिए है क्योंकि इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं और इन्हें हम घर पे बना सकते हैं, उसकी वजह से ये बिल्कुल अफोर्डेबल बन जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेगुलरली ज्यादा ठंडा खाएं, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो मैंने आपको सारे डिस्क्लेमर्स भी दे दिए हैं, अब सीधा टॉपिक को शुरू करेंगे। पर उससे पहले कुछ प्यारे गाने सुनते हैं। आप सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM। बी रिलैक्स विद आरजे स्वरा।

तो नेचुरल कैंडीज और आइसक्रीम्स हम बना सकते हैं घर पे, बिल्कुल घर पे पड़ी हुई चीजों का इस्तेमाल करके। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घरों में नारियल तो होता ही है, जनरली साउथ इंडिया में नारियल बहुत इस्तेमाल किया जाता है और हमारे घरों में हमेशा ही नारियल होता है। हम किसी मंदिर जाके आते हैं, भगवान को नारियल का चढ़ावा चढ़ाते हैं और उसमें से आधा नारियल हमें प्रसाद के स्वरूप में मिलता है। तो हर बार कितनी बार हम नारियल की चटनी बनाएंगे, कितनी बार हम नारियल का दूध निकाल कर उसका इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत बार ना नारियल का जो प्रोसेस होता है वो भी बहुत लंबा होता है। उसको फोड़ो, पानी निकालो, नारियल के टुकड़े अलग करो, फिर उसका इस्तेमाल करो, तो हम बोर हो जाते हैं और नारियल का इस्तेमाल करना कम कर देते हैं, तो बहुत सारे नारियल हमारे घर में पड़े पड़े वेस्ट हो जाते हैं। तो ऐसे नारियलों को वेस्ट मत करें, उससे एक इंटरेस्टिंग चीज हम बना सकते हैं जो है नारियल का आइसक्रीम। ये आइसक्रीम आप नॉर्मल नारियल जो हम कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं उसका भी बना सकते हैं, या फिर टेंडर कोकोनट जो नारियल का पानी हम पीते हैं और उसकी मलाई हम खाते हैं उससे भी बना सकते हैं। कैसे बनाना है बिल्कुल आसान है, बहुत डिटेल में रेसिपीज नहीं दूंगी मैं क्योंकि ये बी रिलैक्स का शो है। यहाँ पर आपको मुझे ज्यादा बोर नहीं करना है, बस आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि ये चीज कैसे बनानी है, तो आप इसे घर पे ट्राई कर सकते हैं। सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM, बी रिलैक्स विद आरजे स्वरा। तो नारियल का आइसक्रीम बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए नारियल, ऑफ कोर्स कॉमन सेंस है। नारियल का पानी हमें निकाल कर अलग कलेक्ट करना है और उसके बाद में, टेंडर कोकोनट है तो काफी ज्यादा पानी निकलेगा और नॉर्मल कोकोनट है जो पूरा पका हुआ कोकोनट होता है उसमें से पानी थोड़ा कम निकलेगा। जो भी आप ले रहे हैं, मेरी माने तो टेंडर कोकोनट लीजिए, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो नारियल का पानी निकाल कर अलग ले लीजिए, नारियल के टुकड़े करके अलग ले लीजिए, या फिर नारियल की मलाई को अलग से कलेक्ट कीजिए। अब इसमें क्या करना है, नारियल की मलाई में भी थोड़ा ब्राउन पार्ट ऊपर छिलके जैसा आ जाता है वो हमें हटा लेना है, और नारियल के टुकड़े अगर हो तो उनका भी जो ब्राउन ऊपर वाला लेयर होता है छिलके जैसा, उसे भी हमें पीलर से पील ऑफ कर देना है क्योंकि हमें नारियल का बिल्कुल व्हाइट कलर का आइसक्रीम बनाना है। तो इन दोनों चीजों को करने के बाद नारियल के टुकड़े या फिर मलाई और नारियल का पानी मिलाकर हमें मिक्सी में चलाकर उसका एक प्योरे बना लेना है। अब उसमें आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने की इच्छा नहीं है तो गाढ़ा मिल्क जो होता है, जो हम घर में रोज दूध इस्तेमाल करते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा दूध, और मिठास के लिए आप इसमें खजूर डाल सकते हैं अगर बिल्कुल भी नेचुरल बनाना है, हनी डाल सकते हैं या फिर जैगरी पाउडर डाल सकते हैं, और अगर आपको शक्कर डाल के बनाना है और बिल्कुल कलर सफेद रखना है तो आप शक्कर भी डाल सकते हैं। इन चार चीजों को बिल्कुल अच्छे से मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए और फिर उसे आइसक्रीम के मोल्ड में डाल दीजिए और स्टिक्स लगाकर उसको फ्रीज कर दीजिए। क्योंकि ये बहुत थिक है और क्रीमी है आइसक्रीम, तो इसे जमने में थोड़ा टाइम लगेगा, यानी इसमें पानी का कंटेंट कम है। नारियल पानी जो इस्तेमाल किया बस वही है, बाकी तो मलाई कोकोनट भी ऑयली रहता है और मिल्क का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसे जमने में टाइम लगेगा। तो अच्छे से उसे 10 से 12 घंटे तक जमने दीजिए। आजकल के फ्रीजर्स बहुत अच्छे आते हैं, नया फ्रिज अगर हो आपका तो जल्दी जम जाएगा, अगर पुराना

मॉडल्स हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, 10 से 12 घंटे आराम से दीजिए और फिर उसको डीमोल्ड करके एंजॉय कीजिए। अगला रेसिपी जो है वो आपको कुछ ही देर में बताऊंगी, पर उससे पहले कुछ ठंडे ठंडे प्यारे प्यारे मजेदार से गाने सुनिए। सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM, बी रिलैक्स विद आरजे स्वरा।

वेलकम बैक दोस्तों, बी रिलैक्स पर आज हम समर में नेचुरल होममेड आइसक्रीम्स कैसे एंजॉय कर सकते हैं इस विषय पर बात कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट हम अभी रेसिपी में इस्तेमाल करने वाले हैं, जो समर्स में हर एक के घर में रोज इस्तेमाल किया जाता है, वो है आम। पके आम का आइसक्रीम आप बना सकते हैं और कच्चे आम से आप आइस कैंडी भी बना सकते हैं। तो पहले ना मीठे से शुरुआत करते हैं, पके आम से। तो पके हुए आम का पल्प निकाल लेना है और जैसे हम मैंगो मिल्कशेक बनाते हैं, मिल्कशेक बना लेना है। पर एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आपको बहुत थिक और अच्छी आइसक्रीम चाहिए तो मैंगो का पल्प ज्यादा लेना और मिल्क कम लेना। यानी जब आप मिल्कशेक बनाएंगे ना तो वो बिल्कुल थिक शेक जैसा बनना चाहिए, बिल्कुल गाढ़ा, बहुत गाढ़ा। मार्केट में जब हम थिक शेक पीने जाते हैं वो कितने गाढ़े होते हैं, वैसे गाढ़ा शेक बनाना है। और गाढ़ा शेक बनाने के लिए आपको उसमें कॉर्न स्टार्च या कुछ थिकनिंग एजेंट्स डालने की जरूरत नहीं है। जब आप मैंगो का पल्प ज्यादा लेंगे और दूध कम लेंगे तो मिल्कशेक ऑटोमेटिकली थिक हो जाएगा। और एक बात बताऊं, ये जो मैंगो मिल्कशेक है अल्फांसो यानी अपने रत्नागिरी आम से तो बहुत टेस्टी बनता ही है, पर अगर आपको गाढ़ा बनाना है तो आप ना तोतापुरी आम, जो पका हुआ तोतापुरी आम होता है ना, उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो ज्यादा मीठा होता है। बाकी सारे आम में थोड़ी बहुत खटास आती है, तो तोतापुरी आम अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत पल्पी होता है और बहुत मीठा होता है और इससे आइसक्रीम बहुत अच्छी बनेगी। तो मिल्कशेक बना लीजिए और उसमें छोटे छोटे पीसेस पके हुए आम के डालकर मिला लीजिए और इसको फ्रीज करिए मोल्ड्स में डालकर, स्टिक लगाकर। हाँ, इसे जमने में टाइम लगेगा, इसलिए 10 से 12 घंटे इसे आराम से जमने दीजिएगा और फिर आप अपने घर में होममेड मैंगो आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अगर कस्टर्ड फ्लेवर आपको पसंद है तो कस्टर्ड पाउडर को दूध में घोलकर भी आप मिल्कशेक में डाल सकते हैं, पर आई वुड प्रिफर आप नेचुरल जो आमरस वाला फील लेना चाहते हो तो सिर्फ मैंगो पल्प, मिल्क, इन दो चीजों से ही बहुत बढ़िया आइसक्रीम बना सकते हैं। और एक छोटी सी टिप मैं आपको देना चाहती हूँ कि आइसक्रीम्स जब हम बनाते हैं उसको ज्यादा मीठा मत बनाइए, क्योंकि जितना मीठा बनाएंगे ना वो बहुत आर्टिफिशियल लगता है। नेचुरल फ्रूट्स का जो फ्लेवर एंजॉय करना चाहते हैं तो मीठा कम बनाइए, फ्रूट की नेचुरल मिठास को एंजॉय कीजिए। इसी के साथ कुछ गाने सुना रही हूँ, वो भी एंजॉय करना और लौट कराना KLEV विनुध्वनि 90.4 FM पर।

आम की बात हुई पके हुए आम की, तो कच्ची कैरी पीछे कैसे रहे? आइस कैंडी कच्चे कैरी की बनानी हो तो बिल्कुल आसान है। जैसे हम घर पे आम पन्ना बनाते हैं, कच्ची कैरी को उबालकर जनरली व्हाइट कलर बनाना हो तो शुगर डालते हैं, पर एक्चुअल उसका फ्लेवर जैगरी में बहुत अच्छा आता है, गुड़ में बहुत अच्छा आता है। तो कच्ची कैरियों को छील कर उसके उबाल कर प्योरे बना लीजिए, साथ में गुड़, इलायची, ब्लैक पेपर, काला नमक डालकर एक थिक जैम जैसा बन जाएगा मिक्सी में जब आप घुमाओगे, दैट इज द पल्प ऑफ आम पन्ना। और उसको हम जब आम पन्ना बनाते हैं तो एक चम्मच इस पल्प को एक ग्लास पानी में मिलाकर कच्ची कैरी का शरबत बनाकर हम पीते हैं गर्मियों में। ये बहुत हेल्दी है और इससे आपको लू की तकलीफ नहीं होगी, गर्मी से अपने शरीर को बचाने के लिए और हाइड्रेटेड रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बस ये जो शरबत आप बनाते हैं ना, इसे आइसक्रीम मोल्ड में डालकर स्टिक लगा दीजिए और कच्ची कैरी की आइस कैंडी एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये टिपिकल फ्लेवर्स जैसे हम आम पन्ने में डालते हैं इलायची, काला नमक और काली मिर्च, ये अगर नहीं पसंद हो तो ये सारी जो स्पाइसेस हैं इनको हटा दीजिए, सिर्फ कच्ची कैरी, गुड़ या शक्कर या मिश्री और पानी। इससे भी आप आइस कैंडी बना सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी लगती है। इसमें केसर अगर ऐड करोगे ना तो वो भी, केसर का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, पर कुछ लोगों को नहीं पसंद होता। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी फैमिली के पसंद के हिसाब से ये आइस कैंडी बना सकते हैं और फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। शो में आगे बढ़ते हैं और आपको देती हूँ मैं एक म्यूजिकल ब्रेक, और लौट कर आइए, बहुत सारी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज है मेरे पास।

समर्स में जामुन बहुत अच्छे मिलते हैं और इन जामुन को अगर आपको एंजॉय करना है आइसक्रीम में, होममेड आइसक्रीम में, तो थोड़ी लेंदी प्रोसेस है। अच्छे पके हुए गले हुए जामुन मार्केट से लेकर आइएगा और इन जामुन को अच्छे से वॉश करके उनका पल्प निकाल लीजिए, बीज अलग कर दीजिए। अगर चंक्स पसंद हो आपको फ्रूट के तो प्योरे मत कर देना, उसको काट लेना, जामुन के टुकड़े कर लेना और बीज अलग कर देना। फिर इनमें अगर शक्कर इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको जितना जामुन है उससे, यानी एक कप अगर आपके पास जामुन के टुकड़े हैं तो पौना कप, आधे से थोड़ा ज्यादा, और पूरे कप से थोड़ा सा कम, पौना कप, 75% ऑफ द कप भर के शक्कर या मिश्री या गुड़ या जागरी पाउडर आप ले सकते हैं और इन दोनों को साथ में मिलाकर थोड़ी देर उबालिए, जब तक शक्कर मिश्री या गुड़ जो भी आपने लिया है वो पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए। जामुन जब काटते हैं तो अंदर से सफेद दिखता है, पर जैसे जैसे वो उबलता है उसका जो कलर, उसके जो छिलके में जो कलर होता है पर्पल कलर, वो उभर कर आता है और बहुत अच्छा कलर आता है। ये जब उबल जाता है और सारी शक्कर या गुड़ मेल्ट हो जाता है तब एक जैम जैसा कंसिस्टेंसी इसका बन जाता है। फिर इसको आपको गैस से उतार लेना है और ठंडा करने रख देना है। बिल्कुल ठंडा होने के बाद इसको 5-10 मिनट या 15 मिनट के लिए आप नॉर्मल फ्रिज में रख सकते हैं, उसके बाद उसको निकाल लीजिए। और मिल्क क्रीम जो होता है, घर की दूध की मलाई, एक कप मलाई लेकर उसको हमें व्हिप करना है। व्हिप करना है यानी बीटर जो आता है, इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करना है, उसके अंदर बहुत सारी हवा भरनी है और इस क्रीम को बहुत फ्लफी बनाना है। अगर आपको बाहर के आइसक्रीम जैसा टेक्सचर चाहिए तो आप व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, पर व्हिपिंग क्रीम जो है वो हेल्दी नहीं है क्योंकि वो वेजिटेबल ऑयल से बनती है। इसकी जगह पर आप थिक मिल्क क्रीम इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छा है। तो बीट करके उसके अंदर पल्प मिलाइए, उसको फिर से मिक्स कीजिए हल्के हाथों से। उसके बाद में उसमें आधा कप मीठा दूध यानी थोड़ा सा शक्कर डला हुआ दूध मिलाकर फिर से उसको बीट कीजिए अच्छे से, तो ये भी जामुन का एक थिक शेक जैसा बन जाएगा। और इसको भी मोल्ड में पोर कीजिए, स्टिक्स लगाइए। इसको भी जमने में टाइम लगेगा क्योंकि ये बहुत हेवी और क्रीमी है, तो मेरे ख्याल से 12-14 घंटे लगेंगे। ओवरनाइट भी अगर आप रख दोगे या 24 घंटे तक भी इसे फ्रीजर में रहने दोगे तो वो अच्छे से जम जाएगी और जामुन आइसक्रीम को आप घर पे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगली रेसिपी की ओर, पर उससे पहले कुछ प्यारे प्यारे गाने आपका इंतजार कर रहे हैं, तो उनको सुनिए, एंजॉय कीजिए और मैं आपका यहीं पर इंतजार कर रही हूँ।

अब समर्स में हमारे शहर में और साउथ इंडिया में जैक फ्रूट्स बहुत मिलते हैं, फणस जिसको हम मराठी में कहते हैं, तो उसका भी आइसक्रीम आप बना सकते हैं। फणस की प्योरे बनाकर

मिल्क शेक बनाइए, फनस के छोटे छोटे टुकड़े उसमें मिलाइए, चंक्स मिलाइए और उनको फ्रीज करके आइसक्रीम एंजॉय कर सकते हैं। फिर कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो जनरली आजकल पूरा साल मिलते हैं, पर जो सिर्फ फ्रूट्स हैं उनकी आप मिल्क आइसक्रीम नहीं बना सकते क्योंकि दूध फट जाएगा, पर उनकी आप आइस कैंडी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अनार है, ऑरेंज है, मौसम्बी है। तो जो मीठे फल है उनका मिल्क शेक बनाकर उनको जमाकर मिल्क आइसक्रीम एंजॉय कीजिए, और जो खट्टे फल है, जो सिट्रस फ्रूट्स है, उनकी आइस कैंडी बनाकर आइस कैंडी एंजॉय कीजिए। मेरे हिसाब से जो भी फल आपको मार्केट में दिखता है उसकी आइस कैंडी या आइसक्रीम आप घर पे बना सकते हैं। तो ये एक तो बजट में भी बन जाएगा, इजीली बन जाएगा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा उसको कर सकते हैं और अपने फैमिली के साथ एक हेल्दी आइसक्रीम या आइस कैंडी एंजॉय कर सकते हैं। तो क्यों बाहर की आइसक्रीम खाना और अपनी हेल्थ खराब करना। शौक के लिए कभी महीने में एक आध बार बाहर की आइसक्रीम खा ली तो बात अलग है, पर जब हम खुद घर पे आइसक्रीम बनाते हैं ना तो उसका मजा कुछ और होता है। आप नींबू पानी की भी आइस कैंडी बना सकते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट देना है तो पुदीना डाल दीजिए, काला नमक डाल दीजिए, या फिर जो हम कॉकटेल्स बनाते हैं घर पर अलग अलग शरबतों के, उसकी भी आइस कैंडी बनाकर आप उसको भी एंजॉय कर सकते हैं। क्रिएटिविटी का कोई लिमिट नहीं होती, इसलिए अपनी क्रिएटिविटी को दौड़ाइए और आपको जो फ्लेवर्स पसंद है उनके साथ थोड़ा सा खेलिए और अपनी फैमिली के लिए एक प्यारी सी ट्रीट क्रिएट कीजिए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। इसी के साथ मैं आज स्वरा आप सभी से विदा लेती हूँ। जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, अपनी ऑनलाइन जिंदगी से थोड़ा सा ऑफलाइन वक्त निकालिए और इन गर्मियों में फैमिली के साथ एक हेल्दी होममेड आइसक्रीम एंजॉय कीजिए, क्योंकि फैमिली टाइम तो इम्पोर्टेंट है ही, पर उसी के साथ आपकी हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसु और हमारा फेवरेट शो यादों की बारात लेके आई हूँ मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्वरा। दोस्तों, हम इस शो पे आपको कुछ ऐसे सदाबहार नगमे सुनाते हैं जो आप रोज तो नहीं सुनते, पर जब भी सुनते हैं तो गुनगुनाए बिना रह नहीं पाते। आज का शो ना थोड़ा सा हटके है, पता है क्यों? क्योंकि जिनके ऊपर आज का ये शो आधारित है उनके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं ऑनेस्टली आपको बताती हूँ कि इनके जैसी कोई हीरोइन है और उन्होंने ये सारी फिल्में की है, उन फिल्मों में ये सारे गाने हैं, ये मुझे कतई पता नहीं था। उसमें से बस एक गाना थोड़ा जाना पहचाना ज़रूर था दोस्तों। तो आप सोचोगे अगर स्वरा आपको इस हीरोइन के बारे में कुछ पता ही नहीं था तो आपने यादों की बारात कैसे किया? जनरली हम ना बैठ के इंटरनेट पे और हमारे यहाँ पे जो भी सोर्सेज है उनके ऊपर रिसर्च करके हम हमारे शोज बनाते हैं। तो यूं ही मेरी नज़र इस नाम पे पड़ी और क्यूरियोसिटी जागी कि भाई ये है कौन और उन्होंने क्या क्या किया है। तो जैसे जानने की कोशिश की वैसे वैसे और जानकारी मिलती गई और मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई और उसी का नतीजा है आज का शो। अच्छा, और सस्पेंस नहीं बढ़ाती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि आज का शो नलिनी जयवंत के ऊपर आधारित है। और बातें बताने से पहले सुनते हैं उनका ये पहला गाना। नौजवान फिल्म का ये गाना है जो 1951 में रिलीज हुई थी, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, म्यूजिक दिया है ST बर्मन ने और इस फिल्म में प्रेम नाथ के साथ साथ नलिनी जयवंत ने काम किया था। गाने के बोल है ठंडी हवाएं। सुनिए ये खूबसूरत सा गाना और सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसू।

दोस्तों, किसी को नहीं पता था कि नलिनी बड़ी होके फिल्मों में काम करेंगी, क्योंकि उनके पिताजी फिल्मों के काफी खिलाफ थे। पर आगे चल के जब नलिनी की बुआ की बेटी फिल्मों में काम करने लगी, जिनका नाम था शोभना समर, तो उसके आगे नलिनी को फिल्मों में काम करने से कोई नहीं रोक पाया। और उसका नतीजा ये हुआ कि कई शानदार फिल्में उन्होंने की, जिसमें कई खूबसूरत गाने हैं और उनका अभिनय बहुत ही खूबसूरत रहा है। अगला गाना मैं आपको सुनाती हूँ, अभी शाम आएगी, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। समाधि फिल्म का ये गाना है जो 1950 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में नलिनी जयवंत के साथ हमने अशोक कुमार को देखा था। म्यूजिक दिया है सी रामचंद्र ने। आप सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनासूर।

दोस्तों, यादों की बारात हमारा खूबसूरत सा सफर चल रहा है। आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्वरा। क्या आप जानते हैं मशहूर फिल्म एक्ट्रेसेस तनुजा और नूतन ये नलिनी की भतीजियां हैं और काजोल और मनीष बहल उनके नाते नातिन हैं। जब नलिनी ने काम शुरू किया तब वो बहुत ही छोटी थी। उनकी पहली फिल्म थी राधिका, जिसमें उनका काम बहुत ही सराहा गया और तभी बॉलीवुड में चर्चा होने लगी कि एक नए सुपरस्टार का जन्म हुआ है। उनका अगला गाना मैं सुनाना चाहती हूँ जिसके बोल है, तुम हमसे क्यों डरता है, हम सब चोर है फिल्म का ये गाना है जो 1956 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में शमी कपूर और नलिनी जयवंत ने काम किया था। इस गाने को म्यूजिक दिया है ओपी नायर ने और गाया है आशा भोसले ने। ये मेरा पर्सनल फेवरेट गाना साबित हुआ नलिनी जयवंत का। सुनिए ये खूबसूरत सा गाना और उनके बारे में और इंटरेस्टिंग सी बातें लेके मैं लौट के आऊंगी। सुनते रहिए वेणु ध्वनि।

नलिनी काफी छोटी उम्र से काम करने लगी। वो महज स्कूल जाती थी तब, और उस टाइम के जो डायरेक्टर्स थे वो काफी स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, बहुत ज्यादा सख्त हुआ करते थे। तो डायरेक्टर्स की डांट से और उनकी डिसिप्लिन से परेशान होकर नलिनी कई बार लड़ झगड़ कर घर दौड़ के आ जाती थी और कहती थी कि अब मैं फिल्मों में काम नहीं करूँगी। पर क्योंकि वो इतनी छोटी सी थी, उनको बहलाना फुसलाना आसान था, तो हर बार उनको बहला के सेट पे ले आया जाता था। ऐसी एक फिल्म थी सिस्टर, जिसके मेकर थे महबूब खान साहब। और महबूब खान साहब अपने काम के साथ साथ अपने गर्म मिजाज के लिए भी बहुत जाने जाते हैं। इस फिल्म के एक सीन में नलिनी को रोना था, पर बड़ी कोशिशों के बाद, कई सारे टेक्स देने के बाद भी उनकी आंखों में आंसू नहीं आ रहे थे। और ये देख के महबूब साहब थोड़े से नाराज हो गए, उनको गुस्सा आने लगा। और ये देखने के बाद नलिनी ने अपने आप को संभाला और फिर ग्लिसरीन के सहारे वो सीन पूरा किया, और वो सबसे खूबसूरत सीन हुआ उस फिल्म का। सुनते हैं अगला गाना, गोरे गोरे ओ बाके छोरे। समाधि फिल्म का ये अगला गाना 1950 में रिलीज हुआ था, जिसे म्यूजिक दिया है सी रामचंद्र ने और गाया है लता मंगेशकर और अमीर भाई कर्नाटकी ने। सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE गाना।

दोस्तों, अभी अभी आपने जो गाना सुना ना, वही वो गाना है जो मैंने सुना हुआ है। और ये इकलौता ऐसा गाना है जिसके बारे में मुझे पता था नलिनी जयवंत की, और ये इकलौता नलिनी जी का ऐसा गाना है जिसके बारे में मुझे पता था या ये गाना मैंने सुना था। इसके अलावा आज हम जितने भी गाने सुन रहे हैं वो मैंने भी कुछ दिनों पहले ही पहली बार सुने थे। आई होप आज का शो आपको पसंद आ रहा होगा। आज का शो कैसा लगता है ये हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा नंबर है 9019904904। आगे बढ़ते हैं शो में, और अगला गाना है जीवन के सफर। मुनीम जी, इस फिल्म का ये गाना है जो 1955 में रिलीज हुई थी, जिसे म्यूजिक दिया है एसटी बर्मन ने, लिखा है साहिर लुधियानवी ने और गाया है किशोर कुमार ने। नलिनी जयवंत के साथ साथ इस फिल्म में देवानंद ने भी काम किया था। क्या आप जानते हैं, नलिनी जी उस दौर का हिस्सा थी जब भारत में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था। एक बार वो घर में बैठी थी और उन्होंने देखा खिड़की से कि बाहर एक बहुत बड़ा जुलूस जा रहा है और सब लोग भारत छोड़ो का नारा लगा रहे हैं। तो नलिनी जी भी जोश में आकर बाहर निकल गई और उस जुलूस का हिस्सा हुई। आगे चल के उस जुलूस पे लाठी चार्ज किया गया और कुछ लाठियां नलिनी जी ने भी खाई। ऐसी देशभक्ति हर एक के मन में उस दौर में थी कि अपना काम भी करते थे और देश के लिए लड़ते भी थे। उनके लाइफ के बारे में और कुछ बातें हैं मेरे पास, पर इससे पहले ये गाना सुन लीजिए। सुनते रहिए वेणुध्वनि 90.4 FM KLE कनासूर।

भाई, पर क्या करे, उम्र से मजबूर नलिनी जी सेट्स पे कई बार शैतानियां, मस्ती, मजाक किया करती थी और उनको एक बार डांट पड़ गई। उससे परेशान होकर लड़ झगड़ कर नलिनी जी वापस घर पहुंच गई और उन्होंने अपने पिताजी से कह दिया कि अब मैं फिल्मों में बिल्कुल काम नहीं करूंगी। उनके पिताजी ने डायरेक्टर साहब को फ़ोन करके घर बुला लिया। डायरेक्टर साहब अपने साथ में एक बड़ा सा चॉकलेट का डब्बा लेके आए थे और चॉकलेट देख के नलिनी जी पिघल गई। वो ये भूल गई कि उन्होंने अपने पिताजी से कहा था कि अब मैं फिल्मों में काम नहीं करूंगी और सब परेशानी भुलाकर चॉकलेट खाकर वो अगले दिन सेट पे हाजिर हो गई। काफ़ी छोटी उम्र में उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े काम किए। उनको जितनी कामयाबी हासिल हुई उसका अंदाज़ा उनको खुद को भी नहीं था। चलो बातें तो जारी रहेंगी, पर अगला गाना सुनते हैं। लो हो गई प्यार की जीत, जादू फिल्म का ये गाना है जो 1951 में रिलीज हुई थी, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, लिखा है शकील बदायूनी ने और म्यूजिक दिया है नौशाद ने। नलिनी जयवंत के साथ इस फिल्म में सुरेश ने काम किया था। आप सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसू।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुन और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

ट्वेंटी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारा हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग। और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

पुणे 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरू थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेनू थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।